0: सर्वसागरनिस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स
0: पार्थिया रूप ना पेखे नेत्र साथ की टहल स्थान संकेत
1: करन न सुने काहू की निंदा सबते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद

0: बहुविध अनुपकार अष्टपदी।
1: कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी,
0: कई कोट प्रतीत दासी, कई कोट बनन में उदासी,
1: कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते,
0: कई कोट आत्म ध्यानता है, कई कोट कब का विचार,
1: कई कोट नत नाम ते आवे, नानक करते का अंत न पावे,
0: कई कोट पय अभिमानी।

0: ताप नहारा अंत नहीं किस पारा वारा
1: अदर हावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे
2: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार।

0: प्रभु कृपाती बंधन टूटा, गुर प्रसाद नानक भव छूटा।
1: सहस खटे लख को उठतावे, तृप्ता आवे माया पछे पावे।
0: अनेक भोग विचार के करा, न तृप्तावा कब कब मरा।
1: बिना संतोष नहीं को राजा, सुपन मनोरथ वृथे सब काजा।
0: नाम रंग सर्व सुख होए, बड़

0: संत का दुखी सदा सहकारी है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है।
1: दुखी की पूजन आशा, संत का दुखी उठ चला निरा।

0: कौ हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे
1: जिस प्रभ अपना कृपा करा सो सेवक को किसे डरा
0: जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कारज में आप समाया जब देखो तब सब किछ मूल नानक सो सूखम सोई स्थूल आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट
1: आप सगन में आप अनेक ज्योतिर थाप थाप
0: अब नासी नाही के

0: पापी अमृतयो मन तन तृप्य
1: नाम रतन जिन गुरु मुख पाया तिसके चवर नहीं दृष्टाया
0: धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन ते।

0: आपन तस्य आपन हार नानक ठाकुर यज्ञ पार
1: अविनाशी सुख आपन आसन ते जन्म मरण कहो कहां विनाशन
0: जा पूर्ण कर्ता प्राप्त सोई तब जम की त्रास कह किस होई
1: जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चितर गुप्त किस पूछत लेखा
2: जब नाथ निरंजन गोचर गति तब कौन छुटे कौन बंधन बाधी
1: आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा
0: जय निर्मल पुरख पुरख पात होता जय बिन मैल कहो क्या तोता
1: जय निरंजन

0: अच्छा निजगर तय करिए, सब बैरन को आज संगरिए। तुम है शाट को यवर न त्याऊं, जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं।
1: सेवक शेख हमारे तारिया, चंचल छत्र हमारे मारिया।
0: आप हाथ है मुझे बरी है, मरण काल का त्रास ने वरी है।
1: जो सदा हमारे पछा, श्रीयस तुझो करे ओ रक्षा।
0: राख लोहे मोए राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे।
1: दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो परी चतर दस कंता।
0: काल पाए ब्रह्मा बप्तरा, काल पाए

0: कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ का पूर्ण सब राता श्री अस्तो जब पे दयाला पूर्ण कर ग्रंथ तत्काला
1: मनवांछित फल पावे सोई दू ग्रंथ से व्याप्त कोई
0: अरेल सुने गुंग जो याहे सरसना पावे
1: सुने मूड चित लाए चतुरता आवे
0: दुख दर्द पौ निकड़ न तिन नर के रह
1: हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई
0: संबल सत्रह सहस पर निज अनल

0: देह मोह कोटिक बिशन महेश
1: कोटिन्द्र ब्रह्मा कृते राक्षस क्रोध द्वेष
0: दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत
1: स्वर्ग पासरक बरकरा सगरी पुरी समेत
0: जोहे कथा सुने अर गावे
1: दुख पाते निकल न आवे
0: संपत की ये फल होई
1: आद्या छ सके न कोई
0: सम्मत सत्रह सह सप

तीर्थ देह छुटै गर्व गुमान मंद होटै सोच करै दिन सर रात तू मन की मैड़ न तंत जै तिस देही कहो बह साधना कर मंति कबहु न बिखिया डरै जल तो

करी। कई कोट हुई पुजारी, कई कोट आचार व्याह हरि, कई कोट पाय तीर्थवास, कई कोट बान प्रमादास, कई कोट वेद के स्रोत, कई कोट तुभि स्रोत, कई कोट आत्म त्या अनंता रह, कई कोट कव का विचार, कई कोट नव तन नाम ते अभिनन करते कंदना पाव, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञान, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेगा तुम कोर, कई कोट पर दर्भ कव रह, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम वाहि, कई कोट प्रदीप क्रम वाहि, जेत जेतला वह देत तेतलक नान करते की जान करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राज रह भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाय, कई कोट पाथर बिरख न बजाय, कई कोट पावन प्राण वह संतर, कई कोट दीस भूमंडल, कई कोट शशियर सूर्ण खियातर, कई कोट देवदान इंद्र सिर शतर, सकल सामग्री अपना सूत तार, नानक जह जह पावे ते स तेहन तार, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण समृत अरसासत, कई कोट की रत्न समुद्ध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की चिरजीव, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण धीव, कई कोट जाख किनर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सब तीन रह सब हुते दू नानका बल उतरह अपार पूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरंग वासी, कई कोट जन्म जीव हमर है, कई कोट बहु जन्म फिर है, कई कोट बैठ ही खाही, कई कोट काल थक पाही, कई कोट गिय त्रवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह प्राणा तह तह राख नानक सब गिह प्रभ गहा थी, कई

पृथ्वी सब जान जीवन कोई का भगवान जिसका दुआर है आ गाय बहना तृष्णा लाग आय मार रख कुआ पुमा नुख कह कृष्ण हाथ तिसका कुंभुज सुख तिसका नाम रखंठ प्रोय सिमर सिमर सिमर

सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आ गया सुपातार नाम के तारे सकल आकार नाम के तारे पूरी आस्था पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कर पाए जहा अपना नाम लाई नान चौथे पाद में सोजन गत पाई और रूप सात जाग सत स्थान पुरुष साधु की ओर प्रदान कर दू सात सत जाग बाण सत पुरुष मह समान सत कर्म जाग रचना सत मूल सात सत उत्पाद सत करणी निर्मल निर्मली जिस बुझाई।

संसारजन का सेव सोवड पाएगी जन का सभी अगले बलागी गुण गोविद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक हर पाव श्लोक आदि सच जुग आदि सच है पे सच नानक खुशी पे सच अष्टपदि चरण सत सत वर्षन आदि पूजा सत सत शिवदार दर्शन स

सुमाय जो हुआ हुआ तर सो जाना प्रभ अपने का कुंभछाना दुख महमा का अनुभखाना तस कगुन कही कना जानो आठ पहर प्रभ सह जूरे कह नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लिख मन तन अपना तिन जान देह जिन जान अपना प्रभु पूछा दस सो जान सर थो का दाता तिसकी शरण सर सुख पावे तुम का दर्श स पाव मिटावे और श्याम सगरी शाड़ तिस जान की तू सिवा लाग।

कहु किस को गानी। जब कह हरगम अपार तब नर स्वर्ग कहु कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाई तब सब सकत कहु कित ठाई। जब आप है आप अपने जो तर तब कौन निडर कौन का डर। अपन चल दब करने नानक ठाकुर में अपार बनासी सुखा अपना।

भीख नेरा मिटा ज्ञान बिनसै अंधेरा सोने उपदेश हृदय साहब हमर इच्छे नान खल पायब हरत पलत दुहि दिहु स्वा राम नाम अंतर और तार पूरे गौर के पूरी दिखया जस मन बसत साज प्रीखया मान तन नाम जप लिवलाई दुख दर्द मानती पाव जाय सच वा पार करहु वा पार यो दरगन वह केव तुम्हारी

तो जुग जुग एक वेशम। आसन लोय लोय भंडार जुग छपाया स्वे कवार, कर कर वेखय सृजन हार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश सयादेश आद अनिला नाद अनाह तो जुग जुग एक वेशम। एक दू जीबौ लख हो लख हो वह लख वीश, लख लख गेड़ा किया है। एक नाम जगदीश एक राहे पद पवड़िया, चढ़िया हुई इकीस सुन गला आकाश की गीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़े कूड़ा ठीस, आखन जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देह न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राज माल मनसूर। जोर न सुरति ज्ञान विचार, जोर न जुगति छुट्टा संसार। जिस हाथ जोर कर विखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राति रुति तिथि वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस वि धरती था।

पवित्र पृथ्वी स दिश दृश अकृष भगवती छंदो त्व प्रसाद कथते के अशज दिश के अभिज भिषय के अगंज करमय के अपंज भरमय के अभिज लोक के अद्यत शोक के वधूत वर्ण के विभूत करण के राजंग प्रभा के धर्म तुजा है के अशोक वर्ण के सर्वा अपरण के जगत अंगृति है के छत्र क्षत्रि है के ब्रह्म स्वरूप है के अनुभव अनूप है के आद अदीव है के आप अपीव है के चित्रंग

अमृत है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी तृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, अमृत अमृत है, अजबा कृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खलकायक है,

कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म वास है जस के जस है पुजंग प्रयाद छंद नमो सूर्य सूर्य नमो